बावा लिग्वि फतुं अल्मु लिबि फावा मीहा दन्वि खलेग फानु खाली हिंगवा लिवमग कुरिं खलेग फानुग अरिह तिमं ए गेनस दीफानमे दें एकलेग फानुग अरिहुगा ए तख्तु बेहट्टिफा हुट्टा फेनवडागें हिंदु एकलेग फानु विदालुवि मिकम मिवी अहुरेंगे वेरी रसकलांगे फादुलुवंत कमुन्ने एई अहुरें नियमत शुकुर कुरनीतो नुवत देकोलु वेरी वनीतो इम्तिहान कुरेव्वु मट्टके शुकुर कुरा मीहा दन्नाश फहे एना शुकुर कुरा कं कशवरी हम एनागे अमिल्ल नफ्सशे अदि नियमत देकोलु हदा मीहा दन्नाश फहे हम कशवरुं अहुरेंगे वेरी रसकलांगी फुदि वोडिगेंवा दीलत वंत रसकलांगी।

0: टेक टॉक्स
1: में प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तो दक्कम फंसे है गोते मियोती फाहिपे ऐप।

0: Mamma, badu havejja.
1: Tarifla, soni agathu buni. Mamma ibache mege muluwa.
0: Papa, gaadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school alla.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: है मामा
4: किस पर से
5: मामा फोन एक आ मादमारे तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले वेने दे सोनिया गाता

0: रानी हाखिया दी हिताही भुलानी।
1: ओके
2: मारे रीति माशाल्लाह। उम्मो वकी वाही तेनु में एका मकुएस जेहेनी वकी वेला उम्मो वरं उफावे जेंगे बदलु वेमा उम्मो एहें वी मा बदलु वेमा
1: एहें जाका में इंतजार कुलानी
2: एम मेरांगल उम्मो हम गेनेस तेनी मिन फिल्मो गा हिमेने लवेकम वाशी काया ते केंगे कॉन्फरेंस का हासा कोलानी
1: ಉಫಾವೆ
2: ಉಫಾವೆ ಉಮ್ಮು ಬಾಕಿ ವೆಲ್ಲಾಣ

0: Dejas Sapi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kata befunna a program ka padl calling. Ada mere faru al me tayyaro me gendani. Mere calling ham jifawa Uruguay adi Cape Verde ge me macha. Ada al menge program ka befunna ek ek maulum ha tagen stem me gendani ek onna kulun kulen onna gaw me ge team taka behe go tun gaw ma behe go tun warag ne maulum ma tak hissa kurum me genda. Al menge analyst tun me harus te bi tayyar enge to kuriam me macha ade Uruguay Cape Verde kule macha behe tun e befunge ख्याल फुरता दोस्तों दबा
2: गुरुगुए आरा फिनेर ए फहातुंग लिबे जागता का कुलेगें एटेव कुरन एकन ने मिरे मिगेन सुरे चेंज तो मे आगंडो बेनो मके
3: अदे हम मी टीम बदालार मी टीम हम बारातु का गोल जहां बदालार बारात गोल को तारियो के फुरतम गोल मैच के फेनी दान तो आ कुमसर का चेंज तक हो रहा कम का बलार मी हार दें खाब वाडे वर्ल्ड कप का मिहार मधुवानी पॉइंट ए टीम हमारा रंग और नतीजा हो दे मैन ऑफ द मैच मगाम हो दा फिर पॉइंटिंग हो दा फिर मिहारो ए गोल मधुवानी ए गोल प्रथम गोल ए टीम के तारीफ जहानी कों कुलुन तेरी बाय मिमेचु का एकम वेदान बाय ए सवाल और जवाब हम में हम लिबेन वर कुड कुड तले के तेरेगा मैच पशान का गड़ का फनर का मिनट में होती नम सलाम में हम इश्तिहार के ब्रेक का फाउ प्रथम हाफ के एम फाउ के तैयारी तक की बात हो
4: PSM's coverage of FIFA World Cup 2026. Main sponsor, Maldives Post Limited. Co-sponsor, Allied Insurance in partnership with STO and Maldives Ports Limited. Banking partner, Bank of Maldives. Coverage partner, Villa College, Island Perfumes, MTCC, Proxy Home, EZAP, Stelco and Nort.
5: ಮಸಕತುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ರಶುಗ ಗಸ್ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟಸ್ ಕಂಡುಗ ಮಸ್ಬಾನ ಹುಟ್ಟಸ್ ನುಯಿತಾಕ ಗೇಗ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರಿಯಸ್ ದಿಮಾವಾ ದತಿತಕಂ ಹಲ್ಲಕಿ ಈ ಟುಕುರಿ ಬೇನು ಹುರಿಯಾ ಸಾಮಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ಗಣಲುಮ ಈ ಟುಕುರಿ ಹ್ಯಾರ್ ಕುರಪಾ